इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते।

Chinar Beats with Harshit Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में

फ्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दे
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

रिजनर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं चूक्सिस और आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो वसा यार दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनाव के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्सपर साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। दोस्तों याद रखिए अगर आप घर में गाड़ी में या ऑफिस में सुनना चाहते हैं रेडियो चुनार तो लॉग इन करें www.radiochunar.com पर। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार जागसूस के साथ मजेदार शो वो सब सिटे हिट धड़काते रहो।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चैनल वेदर अपडेट
3: जी हाँ, आज मौसम होने वाला ऑसम क्योंकि बादल सूरज को घेरेंगे और गरज और बरस की भी संभावना है।
2: रेडियो चैनल वेदर अपडेट
3: बादल गरज भी सकते हैं, बरस भी सकते हैं। मैं नहीं कहता, कहता है आज का वेदर अपडेट। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस।
2: वेदर अपडेट
3: यू इंडेक्स अभी से ही स्ट्रॉन्ग पर ह्यूमिडिटी 60%, विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:26 पर, आज का सनसेट होगा 7:47 पर। जी हाँ, माय माइंड ब्लोइंग माहिया, इफ यू आर ड्राइविंग प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, गाइडलाइंस एंड एसओपीज। प्लीज ड्राइव विद सेफ्टी एंड सेंसेस बिकॉज़ टीम रेडियो चनार एंड वी केयर फॉर यू। हॉट फ्रीक्वेंसी, मैं हूँ जॉक्स, हाय हाय

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायलर है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं

तक वायरल चीजें, क्योंकि कहानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए, बात करते हैं एक छोटी सी नन्नी सी मुन्नी सी बिल्ली की जो एक मेट्रो स्टेशन पर बैठी और सबके दिल लूट लिए। अब बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती तो क्यूट लगती है, लेकिन ये बिल्ली कुछ ज्यादा ही क्यूट बनी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के रेलिंग पर बैठकर सबको हाई फाइव्स दे रही थी। अब जो भी वहां से जा रहा था, बिल्ली पंजा ऊपर करके उन्हें तालियां देती जा रही थी, और ये वीडियो कतई वायरल रहा और लोगों के दिल जीत लिए इस मन्नी सिंह बिल्ली ने। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इट्स वर्थ वॉचिंग, क्योंकि भैया वायरल है और व्हाट्सएप पर भी है। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन सड़े हक्त है, हाय हाय हाय धड़काते रहा।

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का थॉट ऑफ द डे। जी, आज का थॉट है, मैं जो पेश आने लग जाऊं मोहब्बत और तमीज से,

मैं जो पेश आने लग जाऊं मोहब्बत और तमीज से, लोगों का इश्क हो जाए इस अनापरस्त और बदतमीज से। और इस फ्रीक्वेंसी श्रेय दरखा दे रहा।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 एफएम आप सुन रहे हैं मजदार शो व्हाट्सएप व्हाट्सएप शो में हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद ताहा और किंसा जहरा, जिन्होंने लिखा है कि सर हम आपका शो पसंद करते हैं, रेडियो चुनाव से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ, किंसा जहरा और मोहम्मद ताहा के लिए और सभी सुनने वालों के लिए ये ट्रैक हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर अगली पेशकश रहेगी आई फील गुड। I feel good a show dedicated to the lovers of Western music. Har dil ki dhadkan radio channel. Zara sa intezar dete rahe pyar. Har dil ki dhadkan ko dhadkate raho mere yaar. Main hoon Jog Sir Srihak.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180

0: bigger. Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
1: Viral hai, tabhi WhatsApp pe.
2: WhatsApp pe.
3: Viral on show WhatsApp.
4: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही

हाँ जी आई आई आई मैं तो आ गई। 91.4 रेडियो चनार पर आगा सो चुका है शो चनार बीट्स पर, और रात भी काट ली, बात बनने वाली है आपकी और मेरी। अब शुरुआत हुई है हालात जज्बात ख्यालात तो आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो अच्छा ही शो का हिस्सा। मैं हूं दीपा, सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चनार 91.4 FM।

Beats on repeat, show to our beats. Day sari baatein, masti mazak, fun, entertainment aur entertainment ke alawa day sari information aap tak pahunchti hai. अब देखिए शुरुआत हुई है और बातें तो बननी है और मौसम भी ऐसा ना है कि सुबह सुबह साथ दम छूट और पता नहीं क्यों अगर हम देखिए एक महीने पहले की बात तो सुबह शाम सर्दी होती थी, अभी सुबह शाम गर्मी होती है और यही तो है कश्मीर का वेदर है ही ऐसा कि हमें पता ही नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो ही जाती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो है कश्मीर का मौसम. बट हाल आपका क्या है कि आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है या फिर लाइफ यही है कि मजे में बॉश. अब मज़ा है तो कैसा मज़ा है, ये सज़ा है या कुछ ज़िंदगी ने एक करवट ले ली है या बहुत कुछ आपके मन में है दबांग में जो चल रहा है जो आप बताएंगे हमें और पहुँचाएंगे वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. Well, I'm super excited, हमेशा की तरह, और आप भी आई नो एक्साइटेड है थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग्स तो बनते हैं ना.

ये खुद गर्जी। देखिए मर्जी तो मेरी है, खुद गर्जी आपकी है, क्योंकि वो है ना कि एक सॉन्ग से मजा नहीं आता है, बैक टू बैक सॉन्ग्स हो तो मजा आ जाता है। बेखबर इस कदर देखिए, बेखबर आपको खबर तो है ही, ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरी पूरी वाइबर ट्राइब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, यानी कि बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चैनल 90.4 एफएम। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats. I've enjoyed career only on Radio Chunar 90.4 FM. We are talking about National Highway of Jammu and Kashmir under recently jo hai disruption dekha gaya multiple jagahon pe landslides aur flash floods ki wajah se, but वो मेंटेनेंस की वजह से उसे दूर कर दिया गया है और कई कई जगहों पे लोकल्स को रोका गया. एंड टू अमरनाथ जी यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा की वजह से उसे तेज़ी से जो है उसे जल्दी से बिल्कुल ठीक किया गया. और अभी अगर हम देखें तो वही है जो गाइडलाइंस हमारे लिए दी गई है. अगर आप जम्मू से श्रीनगर आ रहे हैं, श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनको सिर्फ सुबह से शाम के 7 बजे तक ही अलाउ किया जा रहा है. एंड जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें सुबह से लेकर बराबर रात की 11 तक अलाउ किया जा रहा है. और उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं अलाउ किया जाएगा. सो ये गाइडलाइंस हमें पता होनी चाहिए. और उसके बगैर अगर हम बात करें अमरनाथ जी यात्रा की वजह से ये चीज़ जो है बनाई गई है, ये गाइडलाइंस हम सब के लिए है, हमें इन्हें फॉलो करना है. और अपने डेस्टिनेशन को थोड़ा सा हमने प्लान करके ही पार करना है. तो फिलहाल के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. और हम अपनी ज़िंदगी के हीरो है ये तो हम कहते हैं, बट उसे मानना पड़ता है, एक्शन से दिखाना पड़ता है. और एक्शन से ही तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी बदल जाती है. अब ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और समझदारी हमें गाड़ी चलाते वक्त भी दिखानी पड़ती है.

किया जा रहा है कि 14 अगस्त को मूवी आवारापन 2 रिलीज होने जा रही है। अब देखिए कि एक आवारापन का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। 19 साल पहले जो मूवी रिलीज़ हुई उसने हर एक के दिल में एक छाप छोड़ी है और हर एक दिल कहता है कि क्या ये आवारापन आवारापन जैसी लगेगी। अब फिर से सताने के लिए तो देखिए हमारे इमोशंस ऐसे हैं ना कि इस मूवी के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताइए क्या आप ये मूवी देखने जाएंगे और कितने एक्साइटमेंट है। 8999 0494 टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स व्हाट्सएप करके आप अपनी बात हम तक पहुंचाकर शो में शामिल हो सकते हैं। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: दीवा
1: खबर ऑनलाइन
2: आज की खबर आज की खबर आज की खबर आज की खबर स्वागत है आज की
1: जी हाँ स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में यार मैंने बहुत ज्यादा खबरों विस्तार से आखिर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर खबर तो खबरें तो ये है कि शादियों का सीज़न है शादियाँ बोले ना कि यार जब हम दूसरों के पिक्चर्स देखते हैं उनका पूरा वेडिंग का लुक देखते हैं तो मन करता है कि शादी की जाए बट वही है कि ऐसे लुक से या फिर हर साल का अलग ही थीम होता है कुछ अलग ही ट्रेंड चलता है और बात जब आती है सेलिब्रिटीज़ की यानी कि मोस्टली जब हम बॉलीवुड की बात करें और उनके बच्चों की जब शादी होती है तो हर कोई एक्साइटेड होता है और ऐसी एक वेडिंग जो कल हुई और कपूर ख़ानदान की वेडिंग हो और उसमें एक से बढ़कर एक लुक ना ऐसा हो ही नहीं सकता Yes, I'm talking about Anshula Kapoor and Rohan Thakur जिनकी कल शादी हुई और शादी जो सेरेमनी है वो बहुत ही कम लोग थे इसमें फैमिली थी और बोनी कपूर की डॉटर ऑब्वियसली तो कपूर खानदान तो होता ही और उसमें सबसे ज़्यादा बात हो रही थी लुक्स की यानी कि एक से बढ़कर एक चाहे फिर जानवी हो खुशी हो या फिर ओवरऑल अगर हम देखें वहाँ पर जो भी वहाँ पर मौजूद थे महीप कपूर या फिर सोनम कपूर हर एक के बारे में बात हो रही थी लेकिन उनकी वेडिंग लुक का एक अलग ही इम्पैक्ट था कि भाई कितना अच्छा इन्होंने एक अलग कॉम्बिनेशन चूज़ किया है और कितना ज़्यादा उन्हें प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पर अगर आप भी इनके वेडिंग लुक से थोड़ा सा भी वो कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो वही बेस्ट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है इनका कलर कॉम्बिनेशन एंड आप मुझे बताइए कि अगर आपकी शादी हो रही है कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी ट्रेंड बन चुकी जिसे हम फॉलो करते हैं फिर स्पेशली बॉलीवुड का एक खासा इन्फ्लुएंस भी है हमारी शादियों पर बड़ा है वो सही है या गलत आप बताइए शो कैसा बन चाहिए 8899904 पर आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: है, वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: The game is on. Tune into Radio.

சுற்றுனா 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Tunar 90.4 FM. 4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

देखिए जाने मन की तो मैं खबर नहीं रखती, पर अपनी खबर जरूर है। शो शुरू हो चुका है, हंगामा जहाँ होता है, ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या बजिंग है, और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ यहीं मिलता है।

और देखिए शो शुरू हो चुका है और बराबर चार तक चलेगा। क्या टॉपिक है, क्या ट्रेंडिंग है, इसके अलावा जो भी अपडेट्स हैं रेलवे के हों, किसके हों, क्या हो रहा है असल में, और इसके अलावा ये भी कि एक हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है उसके बारे में बात होगी। गेम ऑन, एक स्पेशल स्पोर्ट्स सेगमेंट, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी।

देखिए आपकी अदा और आपका एफर्ट ये कर सकता है कि आपकी आवाज़ हम तक और उसके बाद वहाँ वहाँ जा सकती है जहाँ जहाँ रेडियो सुना जाता है। मैं मजरा सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM और आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8899904904 इस नंबर यू कैन कॉल मैसेज टेक्स व्हाट्सएप। मैं मजरा सुनते रहिए रेडियो चुनार। मैं बस यूं कही और यू वापस आई।

0: डीजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि अभी हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, किसके बारे में मीम्स बन रहे हैं, भाई मीम्स इज द टॉप एंटरटेनमेंट ऑफ द जनरेशन। और अभी की बात करें तो अभी देखिए हर दूसरे हफ्ते में एक नया रियलिटी शो शुरू हो जाता है। पहले तो ये सब चीज़ें बिग बॉस से शुरू हुई थी, बट अभी इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे TV रियलिटी शोज भी हैं जो एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ के क्रिएटर्स की रियल लाइफ दिखाते हैं। और एक ऐसा ही रियलिटी शो जो जिसका season 2 आ चुका है, लॉकअप season 2, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट फाइटिंग। और लॉकअप का ये कॉन्सेप्ट है कि एक वर्चुअल जेल है जहाँ पे लोगों को कुछ इल्ज़ामात लगाकर वहाँ रखा जाता है, उन्हें टास्क दिया जाता है, वो कंप्लीट होगा जस्ट फॉर द मनी प्राइज, एंड द मनी प्राइज इज 1 करोड़ रुपीज। और अभी की बात करें तो श्रेया एक क्रिएटर है, वो काफ़ी फेमस है, आकांक्षा और उसके अलावा और भी बहुत सारे एलाइज जो उसके साथ आ रहे हैं, जो एक्चुअली इससे पहले स्प्लिट्स वाला में थी एंड शी वॉज डूइंग फैबुलस। बट अभी की बात करें तो राम कपूर जो एक्चुअली एक TV सीरियल आर्टिस्ट रहे हैं, मूवीज में भी काम किया है, ही इज डूइंग रियली गुड ऑन द शो। अब आप ही बताइए आपका फेवरेट रियलिटी शो आज तक का कौन सा है। मैं हूं अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। और रवि के लिए बैक टू बैक ट्रैक्स एंजॉय कीजिए। मैं हूं अस्रा, शो हंगामा, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: हूँ आरजे सूर।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.5।

0: हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. एंड दिस इज अ टाइम फॉर रेलवे अपडेट. और आज की अपडेट यही है कि आप अपने जो भी अपडेट्स हैं, जो भी लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, चाहे ट्रेन बिटवीन स्टेशन हो और कौन सी ट्रेन कहाँ है अभी राइट नाउ, डेफिनेटली वो आप इंडियन ऑफिशियल रेलवे ऐप से पता कर सकते हैं. दैट इज रेल वन. और रही बात जम्मू कश्मीर रेलवे लिंक की, बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी अपडेट्स रहती हैं, अगर कोई ट्रेन डिले हो रही है, क्या हो रहा है, कौन सी कब आ रही है, एंड द टाइम टेबल, द समर टाइम टेबल, यू कैन अवेल थ्रू दिस ऐप.
1: देखने में है हंसी रहती है, यही कहीं खो गई.
0: बिल्कुल नहीं, हम नहीं खोएंगे, हमारी बातें भी हैं और हम भी हैं बराबर चार तक. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. शेयर कीजिए अपने विचार, विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम हैं सही मेरे यार वाला रेडियो सुनार.

0: हाई, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।
1: देखा तुझे तो तसल्ली हुई।
0: बिल्कुल, हमारी तसल्ली तो 2 बजे ही हो जाती है जब आपसे मिलते हैं, बट अभी की बात यह है कि एवरी डे हैज़ अ डिफरेंट टॉपिक, और आज का टॉपिक क्या है, इट्स अबाउट वेमेन एंड अडल्टहुड। कैसे एक लड़की जब छोटी सी होती है, शी ग्रोज अप एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नए होते हैं, और जब एक लड़की 20s की एज को पार करती है, 21, 22, 23, और एक अडल्टहुड, टीनेज से अडल्टहुड में जाती है, तो क्या क्या चेंजेस होती हैं, चाहे हम बात करें मेंटल हेल्थ की, इमोशन हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की, और कौन कौन सी चीज़ें, आपका वो टेस्ट चेंज हो जाता है, आपकी हॉबीज चेंज हो जाते हैं, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर

Radio Chinar. Radio Chinar. Three songs.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाय टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ।

Chinar Beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
4: ओ देखो हो गया फेर, दौड़ होगी शुरू, देखो क्या।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Radio Chinar. Radio Chinar. Three songs.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 एफएम।
2: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Gamay.
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: दिल को
5: करार आ जाए
4: जब भी आए
5: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
5: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
5: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
5: 90.4 FM।
1: रेडियो चनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

Yeah.

अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: प्यास है।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम।
3: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी

0: का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: तभी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4
2: FM।
4: रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

मंदिर, चिंग, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार
0: पांच
1: लेकिन एक बार

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय

0: निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम।
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।